सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे वावन हारे।

गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाये तेरे आठ साठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे। गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

रहाओ। सब सुरती मिलो सुरत कमाई, सब कीमत मिलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड़े आई।

चित वह उदम जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद।

सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करया। उडे ऊड आवे सै कोसा तिस पाछे बचरे शरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल साध बल जाइया तेरा अंत न पारा वरिया।

तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा कर तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

के सुखी एक एक की पीर पशान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकरख कर

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेको नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

सथ खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतख गुरु निस्तारे दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ

ਹਰ ਗੁਰ ਰਖਵਾਲਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਸ।

कहियत हो जगत गोर स्वामी, हम कहियत काल जोग के कामी। हे गरीब निवाज, मेनू कोई सोझी नहीं जे, मेनू कोई ज्ञान नहीं जे, मैं कुछ भी नहीं जे जानदा। तुसी जगत दे मालक हो ते असी कलयुग दे कामी पुरश हां। पैज तुसा ने सवारनी है, हम कहियत कल जोग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, काम क्रोध हंकार इन्हां पंजा ने मेरे अंदर नू खराब कर दिता है, मेरे अंदर नू टुकड़े टुकड़े कर दिता है। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हार जीते अंतर पारियो। थोड़े थोड़े समय विच मैनू दोखी दई जांदे ने, दोखी दई जांदे ने। काम जांदा है, क्रोध आ जांदा है, क्रोध जांदा है, काम आ जांदा है, काम जांदा है, हंकार आ जांदा है, हंकार जांदा है, मोह आ जांदा, मोह जांदा है, हंकार आ जांदा है। पातशाह पल पल विच खराब करी जांदे ने। पल पल हार जीते अंतर पारियो, जत देखो तत दुख की राशी। अजो ना पति आए निगम भई साखी। कहिंदे अजे मन नहीं पतीजदा भई नेकां साखियां, नेकां दृष्टांत साडे कोल ने, पर मन फिर इन्हां विकारां विच डुब जांदा है। अजो ना पति आए निगम भई साखी, गौतम नार उमापत स्वामी, सहस धरन सीस पग घामी। इन दूतन खल बद्ध कर मारियो, बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो। कहो रविदास कहां कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। हे मेरे रमे होए राम जी, तुहाथों बिना मैं कीदी टेक लवां। ये मनमुखां दी बात है, गुरमुख गुरु दे चरणां च बेनती करदा है, महाराज तुहाथों बिना मेरा सहारा कोई नहीं है। बोल साहिबाने बख्शे ने, मनमुख बोल ना जाननी, उन्ना अंदर काम क्रोध अहंकार। अगले बोल थाओ।

ठगियां करके धोखे करके पापा बाजो होवे नाहीं मोया सार ना जाई। मार केंदे बलवंच करके ध्रोह करके ठगी मार के ताड़वी करके बड़े उपाव करदा है माया है राणिया भी माया नू कठिया कर लवा। पर गरीब निवास सचे पातशाह जी केंदे चेता रखी ये कुछ करते रहा है पर गुरु की बाणी दे अमृत शब्द तेरी सुरत विच रहण बहु पर पंच कर पार तन लिहावे। बड़ा उपाव कीता है बड़ा जतन कीता है लै भी आंदा कोई वड्डी गल नहीं है। बहु पर पंच कर पार धन लियावे सुत दारा पै आन लुटावा मन मेरे भूले कपट न कीज अंत नबेरा तेरे जी पाह लीज छिन छिन तन शिज। थोड़े थोड़े समय विच शरीर कमजोर ही हुंदा है छिन छिन तन शिज जरा बुढ़ेपा जनावे जनारे भी बुढ़ेपा आ गया है छिन छिन तन शिज जरा जनावे तब तेरी ओक बुक पानी दा भर दे पींदे हो। महाराज कहिंदे होर ते गल छड़ दे किसे ने बुक भर के चूला भर के भी तेनू पानी नहीं हूं पिओना तरसदा रवेगा ही। तब तेरी ओक कोई पानियों ना पावा कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा सदा जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरु। जमकाल निहाले सास आवकट बेतालिया। बेताला जिस वेले गुरु के कीर्तनीय सिंह साहबान जी बहुत प्यार विच कीर्तन सरवण कराउंदे ने अचानक किसे वेले तपले वाला वीर अणजाण होवे ओ ताल जिहड़ी उहदी उखड़ जांदी है फिर एकदम रागी सिंघां दी निगाह जिहड़ी ओह तपले वाले वाले जांदी उहनूं दसदे ने। मैं कई बार कीर्तन मेरी आदत है भी सुनदे रहना आ ताल वजा बेताला काम हो जांदा है ते जदों बेताला हो जांदा है उदों रस जिहड़ा है ओह बेरसा हो जांदा है। महाराज तेवें कह रहे ने कहिंदे बेताला हो गया जीवन का रस खत्म हो गया इहदा नाम का रस नहीं लै रहा इस गल नूं सोझ ही नहीं पै रही आव घट है उमरा घट रही है। जमकाल निहाले सास ते जम जिहड़ा सुवासा नूं वेख रहा है। एक शब्द तुहानूं याद आ जाणा जे रागी सिंघण वैसे शब्द याद हुंदे ने बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया दस मास माता उधर राखिया बौर लागी माया प्राणी काहे को लोभ लागे रतन जन्म खोया पूर्व जन्म कर्म पहोम बीज ना ही बोया बारक ते बिरद भया हो ना सो होया। जीवन की आस करे जम निहारा सासा बाजी गरी संसार कबीरा चेत ढाल पासा। जम ते सास गिन रहा है किन्ने सुवास रह गए ने। नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रख वाले आ। अंत विच गरीब निवास जी ने कृपा कीती है भी जेड़े प्यारे गुरसिख सतगुरु जी की पावन बारगाह विच आ जांदे ने सतगुरां दी चरणां दी शरण विच आ जांदे ने उबरे ओ बच जांदे ने हर गुर रख वाले आ। मेरा गुरु उन्हां दी रखिया करदा है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्तकाया रखिया परमेश्वर है आत्म रखिया गोपाल स्वामी धन चरण रखिया जगदीश्वर है सर्ब रखिया गुरदायल है पह दुख बिनासन है भगत वश्यल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत है मेरा सतगुर रखवाला होवा। फिर गुरु उन्हां दी रखिया करदा है। गुरु सवारी संगत जी शब्द दी समाप्ति है अमृत बचन सतगुरां ने अपार कृपा कीती है सतगुरु जी रहमता करन साडे भी गुरमुखां वाली बिरती बन जावे सुरत विच नाम दा किनका टिक जावे किनका एक जिस जी बसावा ता कि महिमा गणी ना आवे। अमृत बचना दी सांझ पाउंदिआं बेअंत भुल्लां दीआं माफ़ियां सब संगतां दीआं हाजरियां प्रवान हो जावण जी। एक बार प्यार विच

आओ गुरु सवारी संगत जी साढ़े बहुत ही सत्कार योग रागी सिंह साहबान जी भाई साहब जी भाई ओंकार सिंह जी उन्हां साहब वालियां दा जथा सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर है। आओ उन्हां दी रसीली रसना तो अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करिए। बुलाओ गज के फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जिन्हें भी महाराज की हजूरी विच बैठे हो, साथ चल रहे नहीं, क्यों ना सिमर लईए। महाराज कह रहे नहीं, स्वास स्वास ओदा नाम लो, हर साह विच ओदा शुकराना करो, फिर जीवन विच रस बन जाएगा, टिका बन जाएगा, मन की शांति बन जाएगी। कई बारी सारा कुछ होंदिया होया भी बंदा थिड़किया होया बेचैनी का शिकार है, सच्चे पातशाह कहते हैं स्वास स्वास उसका शुक्र करो, उसका नाम लो, बख्शिश बन जाएगी। करो कि

तुम ते हो यीशु आज्ञा तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी साहिब श्री भगवती जी की पासे दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जिस टिठे शब्द बजाए तेग बहादुर सिमरया घर नौंद दयावे धाए सब थाई होए सा दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी सब थाई होए सा दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ते अंदर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चाली मुकतियां अठियां जपियां तपियां जनाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाई देख केंद्रित किया तिना प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी जिन्हां सिंघा सिंघणियां ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ने चलाए गुरुद्वारा की सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म निहारे सिखी के सस वस सिंह नभाई तिना की कमाई का ध्यान रखे खालसा जी साहब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान रखे बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चिताव चितावन का सदका सर्व सकोय जां जां खालसा जी साहिब तां तां रशरिया देखते फतेह बिरद की पाए पंथक जी श्री साहिब जी साहे खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहे दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन छना चौकियां झंडे बंगे जुग हो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कर रखा आप वाहेगुरु हे अकाल पुरख अपना पंथ साहिब तार जियो श्री ननकाणा साहब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी ने बख्शे माण्यो के मार नाण करता उठिया की ओर सचे पिता वाहेगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उदय कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ता आने रास महाराज जी आप जी के चरणा चरदास बेनती आप जी की महान बख्शिश पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हे दीवाना आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ी वार गुर शब्द दया विचारा उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन होए महाराज जी समुची सेवा निभा बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचार करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या होइया बेअंत फुलां बख्श देणियां जी अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी ग्रहण करन दा बल तुम बख्शिश करना जी बाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसौला आईया संगतां दी आरी दर प्रवान करनी सभना दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सभना अंदरों करुणा आमदान गुर सिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां का नाश करना जी सुखां का प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी बिन संगतां दूर दराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दी जाप सरवण कर रही हां जाप सरवण करद्यां आप जी का धनवाद करद्या बिंत माया गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादारा सिंघा वास्ते उन्होंने भेटा की महाराज जी सारी संगत की हाजरी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया भी बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया चढ़दी कला विच बख्शिश करनी आवे दर घर के सेवक बीबी सुखराज कौर संग्रांत ते वाहिगुरु जी का शुकराना करद्या गुरु घर वास्ते $50 माया भेटा कर देन कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार ने चढ़दी कला बख्शिश करनी बीबी सुरिंदर कौर की सेहत तंदुरुस्ती और चढ़ती कला की अरदास बेनती करद्या भाई मनजीत सिंह औजला गुरु घर वास्ते $126 माया भेटा कर देन कृपा करनी सेवक परिवार की भेटा दर प्रवान करनी परिवार को देर रुकता तंदुरुस्तियां प्रदान करनिया चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी सिख पंथ में एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी खालसा पंथ में चढ़ती कला बख्शिश करनी जी इस वेले दीवाना की संपूर्णता हुई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतान निहाल करो जी से गुरमुख प्यारे मिलना जिन्हें मिले आप जी का नाम चिता आवे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा अग्या पही अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म

ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹੇ ਓ ਭਰ ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰਿ।

ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬ ਹੂ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨ ਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਪ੍ਰਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਾਟ ਘਾਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਜਹਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਆਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੂਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨੇ ਸੁਤਰੈ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖਨਾ ਬੁਝਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੂਨ ਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲਕ ਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਏ ਨ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਊਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ ਜਿਹ ਪੈਂਡਾਏ ਮਹਾ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹਿ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ ਜਹਿ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਹ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਜ ਆਕਰਖੈ ਤਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋਦਾਨ ਮਾਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਬੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰ ਨਾ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛੁ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕਉ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਐ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛੁ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ
ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧਿ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਾਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀ ਸਰਥੀ ਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ਼ਵ ਹੈ ਵਰ ਭੂਮ ਦਾਨ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤਉ ਭੀ ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਾਸ਼ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸੋ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਪਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਕੋਟ ਉਪਾਵ ਦਰਗਹਿ ਨਹੀਂ ਸਿਜੈ ਛੂਟ ਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਪਹਿਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬੇਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪੂ ਨਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਾਧ ਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਾਮੰਦ ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰਤ ਹਨ ਕਉ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦੇਵਉ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੂ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨ ਸੁਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਕਟ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਨਿਆਰ ਏ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤੇ ਸਚੀਤ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਨਿਬਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੇ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਜੈ ਪਿਆਰੈ ਦੂਧ ਭਾਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖਿ ਭਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ ਬਖਸ਼ ਲੇਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਗ ਹਸੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੈ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਦ ਪਾਵੈ ਤਾ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾ ਕਉ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸੈ ਬਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰਮਾਨੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪ੍ਰਾਨੈ
छूट जाए, तिसका श्रम करे, संग सहाई ते सुपर हरे, चंदन लेप उतारे तोए, घर तब प्रीत भाषम संग होए, अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काट लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेखो अंतर मल माया, शपश नाहे काश करे छपाया, बाहर ज्ञान तिहन इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुवा, गल पाथर कैसे तरह अथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज सुमात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गले हो ओढ़ निभावै, कहा बुझारत बुझे डोरा, निस कही है तौ समझे पूरा, कहा बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हां सुगवन, करकार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई तास्यु प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसै, आनंद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर मन मन प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बेहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मह सूक कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सकल समगरी तुमरे सूत्र तहारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तो तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक दिन हार प्रभ छोड़ कै लाग आन सुआए, नानक कहू न सी जई, बिन नावै पत जाए, अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै, एक पी न दे दस पी, हिर ले तौ मूड़ा कहो कहा करे, जिस ठाकुर सिव नाही चारा, ताको कीजे साध नम सुकारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख काहू मन बूठा, जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगनत साहो अपनी देरासो, खात पीत बरतै आनंद उलासो, अपनी अमान काश बाहुल साहो, ले अज्ञानी मन रोस करे, अपने प्रतीत आप ही खोवै, बौरस का विश्वास ना होवै, जिसकी बस्त तिस आगै राखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै, उसदे चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिन सयो मन पछुतावै, जो दिसै सो चलन हार, लपट रहे हो तह अंध अंधार, बटाऊ से जो लावे नेह, ताकौ हाथ न आवै के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल, मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जाप जाप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बेकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कै सुहोवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाये, मेघ बिना ज्यो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के नरारथ दाम, तन तन ते जन जिह कट बस्यो हर नाव, नानक ताकै बल बल जाओ, रहत अवर काश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गांड लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख ना काहू पीन, अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिसका अंतर बसै निरंकार, तिस की सीख तरै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता,
करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपे मानै आपे आप करदन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाव सियानप सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत जिस भावै तिस लय लड़ लाए थांतनंतर रहया समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावै तिस को सिमरत परम गत पावै जिह प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुख ताको जस रसन बखानै जिह प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पात सेती कर जावै जिह प्रसाद आरूप कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुरु प्रभ ताकै जिह प्रसाद तुझ को न पहुचै मन सास सास सिमरौ प्रभ ऊचे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जिह प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जिह प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कौ कब हू ना बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सत तिसे त्याए जो एक अलख इहां उहां नानक तेरी रखै जिह प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पात्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै जिह प्रसाद सुनै करण नाद जिह प्रसाद पेखै बिसमाद जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै जिह प्रसाद परमगत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल ना मनहो बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिस है जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपाए सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बेगास प्रभ सो प्रसन्न बसाए मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कह संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साध कह संग मिटै अभिमान साध कह संग प्रगटै सुज्ञान साध कह संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब हूतन बेरा साध कह संग पाए नाम रतन साध कह संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कह संग अगोचर मिलै साध कह संग सदा पर फुलै साध कह संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कह संग मनोहर बैन साध कह संग न कत हूं तावै साध संग असथित मन पावै साध कह संग माया ते किन साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कह संग महापुनीत, साध संग के स्यों नहीं बैर, साध कह संग ना बीगा पैर, साध कह संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कह संग ना ही हो ताप, साध कह संग तजय सब आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध कह संग न कबहू तावै, साध कह संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कह संग आजार स्वाहै, साध कह संग बसै थान उचै, साधु कह संग महल पहुचै, साध कह संग गृढ़ै सब धर्म, साध कह संग केवल पार ब्रह्म, साध कह संग पाए नाम निधान, नानक साधु कह कुरबान, साध कह संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब ने सतारै, साधु कह संग सो धन पावै, जिस तहन ते सब को बरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कह संग सोभा सुर देवा, साधु कह संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कह संग सर्वथान गम, नानक साध कह संग सफल जनम, साध कह संग नहीं काशुकाल, दर्शन भेटत हो तिनिहाल, साध कह संग कलुकत हरै, साध कह संग नरक पर हरै, साध कह संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कह संग ना बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदर है साध सुन रसै, साध कह संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कह संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निसतरै, साध कह संग लगै प्रभ मीठा, साधु कह संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी, साध कह संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा वेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एकस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी सदा निरलेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ शोख, ब्रह्मज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौला कै तुल पवान, ब्रह्मज्ञानी कै तीरज एक ज्यों बसुधा को, खोदै को चंदन लेप, ब्रह्मज्ञानी का यह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सह सुभाव, ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्मज्ञानी कै मन हुए प्रगास, जैसे तार ऊपर आकाश, ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्मज्ञानी ऊच ते ऊंचा, मन आपो न है सब ते नीचा, ब्रह्मज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्मज्ञानी सगल कीरी न आत्मरस, ब्रह्मज्ञानी चीना, ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते काश बुरा न पया, ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पारो पुकारो महा, ब्रह्मज्ञानी कह नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तहवत बंधा, ब्रह्मज्ञानी कह हुए सुपला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्मज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्मज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्मज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्मज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्मज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्मज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्मज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईए, ब्रह्मज्ञानी कौ बल बल जाइए, ब्रह्मज्ञानी कौ खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्मज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्मज्ञानी कौ सदा आदेश,
ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुकत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तहनी। सलोक उरतार जो अंतर नाम, सर्व में पिख है भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रै रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दुख ते रहत, नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुवै निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ है अवरा नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सकल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसह सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मै जानै असथूल, चौवर ना कौ दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर ना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पाश प्रेत मुगध पाथर को तारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नगरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सुदास दरगह प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरक तैसा सुसोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखो खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म केरा, जैसी मत दे तैसा प्रगाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु विध अनक प्रकार, अष्टपति कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पह तीर्थ वासी, कई कोट बन भ्रम उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सरहोते, कई कोट आत्म त्यान तारै, कई कोट कब का विचारै, कई कोट नव तन नाम त्यावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्ब को हिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया शर्माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानै करता रचना,
कई कोट सेद जति जोगी, कई कोट राजी रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर सास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते निरह सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बौजू नी फिरै, कई कोट बैठक ही खाहे, कई कोट घालै थक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय भाणा तह तह राखे, नानक सब केश प्रभ कै हाथे, कई कोट भये बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन कौ मिल्यो प्रभ अभिनाश, कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत की नो बिसथार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सासा सुमारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलहारणै जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावण करणै जोग, जो तिस भावै सोई होग, थिन मैं साप थापण हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजाय हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडयाई, नानक सब मह रहया समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै तां पात्र तरावै, प्रभ पावै बिन सास्ति राखै, प्रभ पावै तां हर गुण पाखै, प्रभ पावै तां पतत उधारै, आप करै आपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मनुख ते क्या होइ आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे, अनजानत भिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंठ फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जा कौ अपनी करै बख्सीस, ताका लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो ते सुभावै सोई फुन थियो, कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्ब की होत्रवाल, कबहू होए बहै बड राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत मह आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ रखै तिव ही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन भरमै भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ भावै तिव नचावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत ए पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै,
अंतर हुए ज्ञान प्रकाश उस अस्थान का नहीं विनाश मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म के संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कहे सद कुरबान सलोक सुखी बसै मसकीनिया आपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अबे मान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जीवन वंत सो होवत बिष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी वसावै नानक इहा मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गरबावै तृण समान कश संग न जावै बहु लस्कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतर ताका होए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए पसमंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुरग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म निंद्र वै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रीन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कश होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछ पावै अनक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खाप खाप मरै बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करणे हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै न बिन सह आवै न जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझे आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन बिस्थार सब कश उस का ओ करने हार उस ते भिन्न कहो किश होए तां तनंतर एक सोए अपने चले तो आप करने हार कौतक करे रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों के रिमाए संतन कै दुखन कृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत भावै ता ओए पी गत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ताँ उस का पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित
संत के दुखी कौ डान लागै, संत के दुखी कौ सब त्यागै, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्मै मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी कौ नाहीं ठाउ, नानक संत पावै तन लै मिलाए। संत का दुखी हद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी कौ उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थो था, ज्यों सास बिना मृत की लो था, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तन लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं तरपै, संत का दुखी छुटे केला, ज्यों बुआड़ तेल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहतो, संत का दुखी सद मिथ्या कहतो, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक ज्योतिष पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजै ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रिष्ट है कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पाया किरत न मेटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा सदा तिसको नमस्कार, सब घट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास विरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तज हो सियानप सुरजना हो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखा हो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे रख है एक आप, मानुख कै किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उसत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लिह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक ऊजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एको एक पछानै, एत ओत कियो सो जीस जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहतो, सर्व रोग त्यो हर जन रहतो, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसै न लागै दुख, जिस काओ हर प्रभ मन चेत आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य मैं आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तत सब बूजिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल मह आप, अनेक जुगत राचो, थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड, धारण तार रहो ब्रह्मांड, आलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण,
ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬੜ ਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ, ਜੋ ਕੇਸ਼ੁ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਕਰਣੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਓਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਉਨਹੂੰ ਬਣਿਆਏ, ਆਪਸ ਕਉ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ, ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੇਸ਼ ਤਿਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ, ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹੇ ਦਾ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਦੇਣ ਹਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੇ ਹਉ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਦਾ ਆਰੋਗ, ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ, ਤਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸ ਥਮਨ, ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਣ ਨਾਵ ਚਾੜ ਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸ ਤਰੈ, ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਦਰਸਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਉਂ ਮਹਾਂ ਉਦਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮੇਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਸ਼ੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੂਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਾਸ਼ੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਆਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਹੇ ਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਨ ਮਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ, ਲਾਦ ਕੇ ਬਸੰਤੈ ਸੰਗਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹਰ ਤਰਗੈ ਸੋਏ, ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਦ ਬਲਹਾਰੈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਅਨਿਕ ਬੇਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤੈ ਦਰਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਲ ਨਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਉ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਨੀਐ ਤੇ ਹੁਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਕਰਨੇ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕੇਸ਼ੁ, ਤ੍ਰੇਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪਿਹਨ, ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਭਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੋ ਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਣੇ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਅਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਣਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੂਰ, ਤਿਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ,
आनंद रूप मंगल सद जाकै सर्ब थोक सुनिए घर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याहे त्याहे भगतै सुख पाया नानक तिस पुरख का किनै अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जानै पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान तिहन जिन दे जन दास नाम ते आवैसे तिहो गुण मैं जाकू परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके असमान।

नाना चालित करे खिन माहे, पूर रहे हो पूरण सब ठाए। नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घाट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीव नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खांड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरियां सब पवन, नाम कै संग उदरे सुन श्रवण। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पाद मैं सो जन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। सत नृत बूझे जे कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपने में तो गत। जिसकी सृष्ट सुकरण हार, आवर ना बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावै सुवरतिया। बिसमन बिसम पहे बिसमाद, जिन बूझिया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राज जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख कटन हार, जाकै संग तरै संसार। जन का सेवक सुवड भागी, जन कै संग एक लिव लागी। गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावै। सलोक आद सच जुगाद सच, हाय पे सच नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार। आप सत सत सबतारी, आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ बकता, सुरत सत सत जस सुनता। बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करण करावन तिन मूल पछान्या। जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। भय ते निर्भउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहे समाना। बस्त माहे ले बस्त गडाई, ताको भिन न कहना जाई। बूझे बूझन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जन संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक कौ प्रभ पालन हारा, सेवकी राख निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ तार, नानक सो सेवक सास सास सुमार। अपने जन का पर्दा ढाक, अपने सेवक की सर पर रख। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पात रख, ताकि गत मित कोई न लख। प्रभ के सेवक कौ को न पहुँचे, प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे। जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दै दिस प्रगटाया। नेकी कीरी मैं कल रख, पासम कर लस्कर कूट लख। जिसका शासन काढ़ते आप, ताको राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बो भांत, तिसके करता बिरथे जात। मारे न रखे अवर न कोए, सर्ब जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख वेडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत एहो मान तान त्रपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस केश अवर।

होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुकम पछानै। तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कहे एक न जानौ। आठ पहर प्रभ बसै हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओ टले, मन ताने अपना तिन जान दे। जेन जान अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी सरण सर्व सुख पावै, तिसके दरस सब पाप मिटावै। अवर सियानप सगली शाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवण जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। तिस कै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचने हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै। गुर के ग्रह सेवक जोर है, गुर की आज्ञा मन में सहै। आपस को करकश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै। मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत हुए नेह कामी, तिस को होत परापत स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मात ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ। सर्वनिधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म। एक है आप नहीं काश परम, सह सयाण पलया न जाइए। नानक ऐसा गुर वडभागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दुर्गह गवे। सुन कर बचन करण आगाने, मन संतोख आत्म पकियाने। पूरा गुर अख्याओ जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखय होए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। जेह बा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूरन बाबेक। काहू बोल ना पहुचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन नित कर, चरण कमल हृदय सिमरै। साधु बलहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमृत सोए।

सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेपो, मन में रख हर हर एको। अंधकार दीपक परगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठंड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पाओ चूका निर्भौ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपने कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नाही कोए, सर बिन रंत्र एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चल।

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उरत हरो। करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहु नाम हर वथ। ए तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस धन को चार कूट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै। जिस सुख को नित बाछै पमीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबा को करै भली करणी, सा सुबा भज हर की सरणी। अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए। सर्व निधान मैं हर नाम निधान, जप नानक दरगै प्रवान। मन प्रभु दो हर कै नाए, दैत सुतावत आवै ठाए। ताको बिघन न लागै कोई, जाकै हृदय बसै हर सोए। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूर्ण होए आसो, भगत पाए आतम प्रगासो। तित कर जाए बसै अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी। तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा। आवा गवन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरण गुरुदेव। इउं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनको पावना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करो मन लाए, मन बंशत नानक फल पाए। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावै मूर्ख मना। सो तमीत कुटंब अर बनता, इन ते कहो तुम कवन सनाता। राज रंग माया बिसथार, इन ते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी। चिन जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना। नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेहे आने। भगत बिना बहु डूबे सियाने। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो। सार भूत सत हर को नाओ, सह सुभाए नानक गुण गाओ। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल। होहे आचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। छाड़ सियाण पसगली मना, साध संग पावै सच तना। हर पूंजी सांच करो व्यवहार, इहां सुख दरगा जयकार। सर्व निरंतर एको देखो, कहो नानक जप मस्तक लेखो। एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एको एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप। अनेक विसथार एक ते भय एक आराध। प्राशत गए मान तान अंतर, एक प्रभराता गुरप्रसाद। नानक एक जाता श्लोक, फिरत फिरत प्रभ आया। परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती। अपने भगती लाए अष्टपदी। जाचक जन जाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें त्याहावो। चरण कमल सिंह लागै प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट महा सुख हुए, हर रस पावै बिरला कोय। जिन चाखिया से जान त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुभार भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास आन दिन लिव लाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुकत जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया। ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी, रब रहया सद संग हजूरी। जिसका सा तिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
सो क्यों बिसरा जे अगन मैं रख है, गुरु प्रसाद को बिरला लख है। सो क्यों बिसरा जे बिख ते काट है, जन्म जन्म का टूटा गांड है। गुरपूरै तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपहो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपहो अवरह नाम जपावहो। भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन होसी शार। सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपहु गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों बेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस्त दीजै कर माया, गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आद पुरुख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनी यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक नेमक हर के गुण गाए। अनक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कथा मन पहाई। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी सो बातनवंत, हृदय बसे पूरन गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एकाशना दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समात, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वरन चिहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसै व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करने हर ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सेव साकत कहो के तठाए। जब अपहे आप अपनी ज्योत तरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार, नानक ठाकुर अगमा पार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पात होता, तह बिन मैलक हो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार, नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सोत भाई। जय सर्ब कला आपे परवीन, तह वेदक तेब कहा कूचीन। जब आपन आप उरत हर है, तौ सगन आप सगन कहा विचार। जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपने गत जानो आप। जह अशाल अशेद अपेद समाया, ऊहा कसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश, तेहो गुण का नाही प्रवेश।

मोहि। आप सतो किया सब सतो, तिस प्रभ ते सगली उत्पातो, तिस भावे ता करे दिसथार, तिस भावे ता एकंकार, अनक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वरतारा, सर्वनैन आप पेखनहारा।

उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरै लोकै निसकार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सारण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न।

तरस न कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक ने बही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहु संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होते निधान। सर्व इच्छा ताकी पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वत है सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए। जा कै मस्तक कर्म

समानी। दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते ऊच ताकि सोबा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ

कहना कथन न जाई, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जित सपावा, विन पाने के नाय करी, जेती सिर ठोपाई वेखा, विन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सब

सुनया अक्षर का स्नान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगाह, सुनया दुख पाप का ना, सुनया सरा गुना की गाह, सुनया सिख पीर पातशाह, सुनया अंधे पावह राहु, सुनया हाथ वह सुगाहु, नानक भगता सदा विगाह, सुनया दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जिकु कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का वह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिकु मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चुट्टा न खाए, मन्ने जम कह साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ संप्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सिद्धि संबंध, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, मन्ने पावे मुख द्वार, मन्ने परवार साधार, मन्ने तरह तारे गुरु सिख, मन्ने नानक पवह न भिखु, ऐसा नाम निरंजन हुए, जिको मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव दर गहमान, पंचे सोह दर राजान, पंचा का गुरे ध्यान, जी को कह कर विचार, करते कह कर नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख था प्रक्या जिन सूत, जी को बुझे हुए सत्यार, तवल पर किता पार, धरती होर पर होर होर तिस्ते पार, तल गमन जोर, जी जा तरंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने को, ए लेखा लिखिया किता हुए, किता तान सवाल हो रूप, किती दात जाने कौन कूत, किता पसाओ एको को आओ, तिस्ते हुए लख दरी आओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावाए कुवार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, संख जप संख पाओ, संख पूजा संख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती संख दातार, असंख सूरम पक्षार, संख मोल विलाय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारे न जावाए कुवार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, संख मूर कंध कोर, संख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, संख गलबड़ हत्या कमाहे, संख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, संख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, गम गम असंख लो असंख कह, सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलन बाण, अखरां सिर संजोग बखाण, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जि फुरमाए तिव तिव पाहे, जीता कीता तिता नाओ, विण नावे नाहि को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावै इक वार, जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिय हथ पैर तन दे, पानी धोत उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओ धोए, भरिय मत पापा कै संग, धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखण नाई, कर कर करना लिख लै जाहु, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, तीर तप दया दत्त दान, जी को पावै तिलका मान, सुनया मनया मन कीता भाउ, अंतरगत तीर्थ मल नहाउ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, बिन गुण कीते भगत न होए, स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाहु, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती माहु कवन, जित हुआ आकार, वे न पाईया पंडती, जे हुआ लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखण देख पुराण, तित वार न जोगी जाने रुतमाओ न कोई, जा करता सिर ठीक हो साजी, आपे जाने सोई, किव करया का किव सालाई, क्यों वरनी किव जाना,
नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपौ जाने अगे गया न सूहै पाताल पाताल लख आगास आगास कोड़ कोड़क पाल थके वेद कैनिक वात सह सटारह कैनक ते बासलू एक धात लिखा हुए तनकी है लिखा हुए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पव है समुंद न जानी है समुंद सा सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे इहो अंत न जाने कोए बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब उच्चा थाओ उच्चे उपर उच्चा नाओ एवड़ उच्चा हुवै कोए तिस उच्चे को जाने सोए जेवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगै जूद अपार कित्या गणत नहीं विचार किते खप तुटै बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूरख काही खाए कित्या दुख भुख सदमार के पेदा तेरी दातार बंद कलासी भाणे हुए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखन पाए ओ जाने जितिया मुँह खाए आपे जाने आपे दे आखे से भेके के जिसनु बख्शे शिव सालाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवह मुल लै जाहे अमुल पाए मुला समाहे अमुल धर्म मुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म मुल फरमान मुलो मुलाख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए आखह वेद पाठ पुराण आखह पढ़े करह वख्यान आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तै गोविंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह किते किते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुंजन सेव किते आखह आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे किते किते होर करे हे ताक न सकह के जिवड़ भावै तिवड़ होए नानक जाने सचा सोए जे को आखै भूल बिगाड़ तां लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो घर के हा जित वै सर संभाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वावन हारे किते राग परिशो कहियन किते गावन हारे गावै तुहनू पौन पानी बै संतर गावै राजा धर्म दुआरे गावै चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावै इंदिंदा सुन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतुखी गावै वीर करारे गावन पंडित पणद खीसर जुग जुग वेदा नाली गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावह जूद महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनु गावह जू तुद पावन रते तेरे भगत रसाले ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ मुंदा संतोख शर्म पर चोली ध्यान की करे विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश सह आदेश आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एक कुवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सिदवरा साध संजोग जोग द्वेकार चलावै लिखे आवै भाग आदेश सह आदेश
आदनील अनादनाथ जुग जुगे को वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारिक भंडारी कलाए दीवान जीव तिस भावै तिवे चलावे जीव होवे फुरमान वेखै उना नदर न आवै बहुताय विडान आदेश तिस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दू जी बहु लख होहे लख होवै लख वीस लख लगे डाया खिया एक नाम जगदीश हेत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्लाया काश की कीटाया इरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै न जोर जोर न मंगण दे न जोर जोर न जीवन मरण जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुट्टै संसार जिसा जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती चित्ती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उत्थै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड काया को करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बर में काढ़त घड़ी है रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुधनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रतन समुंद कितिया खानी कितिया बाणी किते पात नरिंद कितिया सुरती सेवक किते नानक अंत नंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़ी है सुरा सिद्धा की शुद्ध कर्म कांड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोत महाबल सूर तिन महराम रहा भरपूर तिथै सीतो सीता महमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरे न ठागे जाहे जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लोक रह न सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नजर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै तंत नंत तिथै लो लो आकार जिव जि हुकम तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पौ खलागन तपताओ भांडा पौ अमृत तटाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक।

करने के राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि अशोक बरने कि सर्वा परने कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कह अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं फहीम है कि अकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तमामुल रुजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल की राज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है वंगाद रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गंग त्रिवाद्य अगंजे अगाधे शुभंग सर्वागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रनाश है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद तव चाचरी चंद अपंग है अनंग है अपे अखे है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिक है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चिरपट चंतव प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल चंतव प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंतव प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी देहांद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नल जमाल है गनीमुल किराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है वहस्तुल निवास है कि सर्वुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अधीश है आदिशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जुमा है अमीकुल हिमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनांग है कि मितो अपांग है मत

छंत्व प्रसाद। मुनमन पर नाम गुनगन मुदाम, अरवर अगंजु हर नर पर पांजु। अनगन पर नाम मुनमन सलाम, हर नर अखंड बरनर अमंड। अनुभव अनास मुनमन प्रकाश, गुनगन पर नाम जल तल मुदाम। अनछिज अंग आसन अपंग, उपमा अपार गतमित उदार। जल तल अमंड दिस विश अपंड, जल तल महंत दिस विश बेअंत। अनुपवना त्रितर तुरास, आजान बाहु एक सदाहु। ओंकाराद कथनीय नाद, खल खंड खयाल गुरुवर अकाल। कर कर प्रणाम चित चरण नाम, अनछिज गात आजिज न बात। अनचंज गात अनरंज बात, अनटुट भंडार अनडट अपार। आडीठ धर्म अतडीठ कर्म, अनवरण अनंत दाता महंत। हर बोल मना छंत्व प्रसाद, करुणालय है अरकालय है। खलखंडन है महमंडन है, जगतेश्वर है परमेश्वर है। कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तरण है जग के करण है। मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग पर है सर्वंग कर है। सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है, करुणा कर है विषम पर है। सर्वेश्वर है जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से कल खंड से परते पर है। करुणा कर है जपा जप है थपा थप है। अकृता कृत अमृता अमृत है, अमृता अमृत है। करुणा कृत कृता कृत है धरणी तृत है। अमितेश्वर है परमेश्वर है, कृता कृत अमृता अमृत है। जब्बा कृत अमृता अमृत है, नर नायक है कल गायक है। विश्वम पर है कुरनालय है, निपनायक है सर्पायक है। पावभंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है। अकलंकृत है सर्वाकृत है, कर्ता कर है हरता हर है। कर्ता कर है हरता हर है, परमात्म है सर्वात्म है। आत्म बस है जस की जस है, पुजंग प्रया छंद है।

नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंतां संसात रूपे नमो परम तत्तं तत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम काम अगाह अटाह अनाथे प्रमाते अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुलना में समस्त निवासे निरकामंग बेपूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्यंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्त निवासी अजाय बेपूते गजाय गनि में हरियंग करियंग करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सोयाम्पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते सर्व

सदा अंग संगे अपंगं बेपूते। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इको अंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुदादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूपू तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिद न्यावत शीश न जात बिचारे इते भय तो कहा भय भूपत अंत को नाग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत टोल मृदंग निगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पस्ते भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक वसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पिक है पौन आहार जति जतार सबै सुबिचार हजार के दिख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरिन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर अबचार सार की तार पछैया तोर देश मलिंद मुवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान की तोड़न हार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको शरणायक जाचक नेक सु एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब ताप थपेंगे पुन परतापन बाढ़ जैत तुन पापन के वो कुंज कपेंगे साधु समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र जिंदर निराधप जौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पतंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रसह पग ते नर फेर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त्यां लगायो नाथ फिर सा समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो गास की बख्यान सु बैठ कह ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन लेहु सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पाए।

पवित्र बाणी, जिनको नजर कर्म हुए हृदय तिना समानी। पीव अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पानी, कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे, कच्ची आंख वखाणी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जानी। चित जिन का हिर लिया माया, बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, इहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतने आपे, जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता पुपाए, कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आवे कह, गुरमुख सह बुझाए। तोड़ै बंधन हुवै मुक्त, गुरमुख तोड़ै बंधन हुवै मुक्त। शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे, सो हुवै एक स्यों लिवलाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमर शास्त्र पुन पा विचार दे, तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी, गुरु बाजहूं तत्तै सार न जानी। तेह गुणी संसार, भ्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनु अंधन हर लिव लागे, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी, मनो क्यों विसारी है। वड़दाता जे अगन में आहार पहुँचावे, वो सुनो कह पोए न सकी, जिसनु अपने लिव लावे। अपने लिवा पेलाए, गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अगन उधर मह, तैसी बाहर माया। माया अगन सभी को जेही, करतै खेल रचाया। जात इस भाणा ता जमया, परवार भला पाया। लिख छुटकी लगी तृष्णा, माया मर वरताया। ए माया जितर विसरै, मोह जय भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिव लागी, तिन विचे माया पाया। हरे आप मुल कै, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए। किसै विट्टा हो रहे, लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जे मिलै, तिसनु सिर सौपिया, विचु आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मने आए। हर आप मुल कै, भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। रास मेरी मन वणजारा, रास मेरी मन वणजारा, सतगुरु तेरा सजानी। हर हर नित जप्यो, जीहो लाह कटे हो तिहाड़ी। तन तिना मिलिया, जिन हरे आपे भाणा। कह नानक हरास मेरी मन हुआ बन जा रहा, रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होरत कित्या जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पिए, हर रस गौड़ न तृष्णा लागै आए। इहो हर रस करमी पाई है, सतगुरु मिलै जिसे आए। कह नानक होर अन रासा विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरे यार, तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता, जिन जी उपाय जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया तां चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नान सिष्ट का मूल रचिया, जोत रखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी। गृह बंदर बनिया, हर गाओ मंगल सखिये। सोख दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे। अपना फिर जापे अनहत बाणी, गुरु शब्द जानी। हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभा मिलिया। करन कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए। कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा। जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया। सो हर मन न वसाया, गुरु प्रसादी हर मन वसिया। पूर्व लिखिया पाया, कह नानक शरीर प्रवान हुआ। जिन सतगुर सो चित लाया, ए नित्र मेरे हो। हर तुम मैं जो तरी, हर बिनवर न देखो कोई। हर बिनवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। इहो वे संसार तुम देख दियो, हर का रूप है हर रूप नदरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जावे, का हर कह हर बिनवर न कोई। कह नानक नितरंत से सतगुर मिलिया, दिव दृष्ट होई। श्रवण हो मेरे हो, सच है सुनै नो पठाए। सच है सुनै नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जिस सुनी मंतन हरिया हुआ, रसन रस माणी। सचल कविडानी ताकि गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, सच है सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख, वाजा पवन वजाया।
ਉਜਾਇਆ ਵਾ ਜਪਾਉ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹਿਨ ਏਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ ਤਿਸ ਤੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਪੰਦ ਰੱਖੈ ਵਾ ਜਪ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸੱਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹਿ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨ ਬੁਝਾਵੇ ਇਹੋ ਸਤ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे जो सरदा कर सिम दे गुर पार उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है।

ਗੁਰੂ

गुरु गुरी में तंत्र जन्मी सतगुरु जी तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दर दी हाजरी पर दिया है बेअंत गुरसिख माई पाई लो आप जी दे बाणी सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दिया जिन सार सिक्खी दान प्रसादान चन्ना कमला प्यार बख्शना खजाने पर परकने सो आओ गुरु प्यारी साथ संग जीव के कंदी इनिक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी टोरंटो कनेडा वाले उन्होंने पासों अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दसलो प्रति प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे। रुद्र तिहान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणी आवै। अमै दृष्ट शुभ कर हरै अग पाप सकल मल।

ਅਰਸਹ ਕੁਰਸਹ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ।

सारी संगत प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध रूहानियत दे भंडार गुरु गरीब निवाज के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दीवाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहंद हैं। शब्द गुरु जुग हो जुग अटल सचे पातशाह आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त होई है। अमृत वेले दा गुर संगत जीओ सुभागा समा प्राप्त होया है। बहुत अपार कृपा है अमृत वेले सतगुरु जी दे आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दीदार प्राप्त होए ने। सतगुरु जी दे अमृत बचन ने दर्शन देख जीवां गुर तेरा मेरा जीवन ही आप जी दे दीदार है। होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण करम होए प्रब मेरा धन सो वेला जित दर्शन करना हों बलहारी सतगुर चरना दर्शन प्यासी दिन स रात चितव अन दिन नीत खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग मीत। गुरु की अमृत बाणी दे अनेकाई प्रमाण ने धर्मा दे ठाडे दरबार तुज बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल की वार तुम तन धनी उदार त्यागी सरवण न सुनियत सो जस तुमार मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निसतार। जय दियो नमा विप सुदमा तिन को कृपा पई है अपार कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार उम क्यो हियो मिलन प्रभ ताई दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन न तारे केड़े केड़े नहीं तार दते। बेअंत गुरु की अमृत बाणी विचों प्रमाण प्राप्त हुंदे ने। वड्डियां भागां वाले गुरसिख माई भाई जी सतगुरां दे दरबार दियां हाजरियां भरदे ने। दूर दरेडे प्यारे गुरसिख अपने घरां विच भी अमृत बाणी दा आनंद प्राप्त करदे ने जी। सतगुरु जी दी अपार कृपा सदका
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 743 ਅਤੇ 744 ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਅਜ ਗੰਗ ਜਲ ਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ, ਅਜ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਯੋ, ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਾਸ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਯੋ। ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ।

ਅਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ।

दुखकृत सुकृत थारू कर्मरी रहाओ। संक्रामस्तक वस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मदे मिलियो सारग पान रे। कर्म कर कलंक मफी टसरी, विश्व का दीपक

टसरी दादी ने लंका गढ़ उपाड़ी ने रावण बन सल बिसल आन तो खिले हरी कर्म कर कछौटी मफी टसरी।

परम तत् है, सतगुरु हुए लखावै धन्ना। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सुवारता। रहाओ

ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

माया भुयंग बिख चाखा। हर हर साध मिलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा। जिहवा क्या गुण आख वखाण, तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत श्री महल्ला चौथा। हम बारिक कछु न जान है, गतमित तेरे मूर्ख मुग्ध याना। हर कृपा तार दीजे मत उत्तम।

ज्ञान मिलायु गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुबाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तू तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरीव है खिन खिन जिन हर मीट लगाना हर हर कृपा धारी मेरा ठाकुर जन बिछड़िया चिरी मिलाना धन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबाना जय श्री महला चौथा सतगुरु साजन।

गुर बचनी बिस हर काटे बा, मेरा मन राम नाम रस लागे बा, हर किए पतित पवित्र मिल साध गुर, हर नामै हर रस चाखे बा। रहा धन धन।

गुण गाएगा। तिनके भाग खीन धुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा। ते दूजे पाए पवह ग्रभ जूनी, सब बिरता जन्म तिन जाए बा।

जिनको कृपा करी जग जीवन हर उर तार्यो मन माझा धर्म राय दर कागज पारे जन नानक लेखा समझा जैत श्री महला चौथा सतसंगत साध पाई वड भागी मन चलता पयो अरूड़ा अनहद धुन वाजह नित वाजे हर अमृत।

हर मिलियो लाई चपीड़ा रहाओ। साकत बंद भय है माया, बिख संचह लाए जकीड़ा। हर कह अर्थ खर्च न साकह, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुरु साधु बहु श्रद्धा लाए मुख तूड़ा। हलत पलत हर शोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर, मिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरहु अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलाव हो, गुर मिले सुख हो ई राम। हर गुण गाव हो मीत हमारे, हर हर नाम रख हो उरतारे। हर हर अमृत बचन सुनाव हो, गुर मिले प्रगट हो ई राम।

हो गुर मिलो पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुख दाता हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख हर मिल हर हर महापुरख गुर मिलो पुर नानक नाम सुख होई राम।

हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग उमा हाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा। हर हर कृपा धार गुर मिलो, गुर मिले हर उमा हाराम।

आप वरते आपे नाम उमा राम आपे दीप लो दीपाहा आपे सतगुर समुंद मथाहा आपे मत मत तत कढ़ाई

करो प्रभु पावे। गुण नानक नाम उमा हराम। जय श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा। हर हर कृपा धार मधुसूदन, मिल सत संग उमा हराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गाव है गुण बोल है बाणी, हर गुण जप उमा हराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तुलाहा, हर हर हर हर नाम न पुजै पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत भारी, गुरमत जप उमा हराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप तो वाहा। दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम उमा हराम। जैत श्री महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कोई जाने कवन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै। ताकि निर्मल री

संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज धनी भूमन चतुरांगा, संग न चाल्यो इन मह कछुए ऊठ सिधायु नांगा।

लागै मुख उजल, संग संतन कै पाइए। जैत सरी महला पंजवां, घर तीजा दुख दे। इको अंकार सतगुर प्रसाद, देहो संदेसरो कहियो प्रै कहियो। बिसम भई मैं बहु बिद सुनते, कहो सुहागन सहियो रहा। को कह तू सब बाहर बाहर, को कह तू सब महियो। बरना दिसै चेह न लखियै, सुहागन सात बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी, लेप नहीं अलपई हो। नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसई हो। जैत श्री महला पंजवां।

कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरियो सागर पाव कौ जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरू हर चरणी चित लाग जैत श्री महला पंजवा मन मह सतगुरु।

आयो दुख हरण शरण करुणापत गहु चरण आसरा। नाव रूप भयो साध संग पावनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत शरी महल्ला पंजवा।

तब संग रह अलिपा नह व्यापै उन बाई एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिनकै संग नानक निस्तरियै जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान भू मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाओ सफल

मने चराहु धूप हार पर तुमरे प्रभु द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काट ले हो नान के अपने को संसार पाव के कूप जैत श्री महल्ला पंजवा कोई जन हर्ष्यों देवे जोर चरण गहूं बकूं सुब रसना दीजह प्राण कोर राव मन तन निर्मल करत के आरो

बंधन चूर। जैत सरी महला पंजवा चात्रिक चितवत बरसत मेहे कृपा सिंध करुणा प्रवतारु हर प्रेम भगत को नेहे रहाओ अनिक सुख चकवी नहीं चाहत अनदपूर।

रहौ। प्रेमठ गौरी जिनको पाई तिन रस पियो भारी, ताकि कीमत कहन न जाई। कुदरत कवन हमारी लाए लय लड़दास जन अपने, उदरे उदरन हारे। प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो, नानक शरण द्वारे। जैत श्री महल्ला पंजवां। आए अनिक जन्म भ्रम सरणी, उधार देह

संगत कैन चल लाभ हो, बिखम नदी जाय तरनी, सुख संपत माया रस मीठे, एह नहीं मन मह तरनी, हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत, हर नाम रंग आपरनी। जय श्री महला पंजवा, हर जन

कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पाओ किछ नाही आदर देवत जाम तज गोपालान जो करनी सोई सोई बिन सत काम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महल्ला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन।

आओ समझ न परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन कोजन कौतायो रतन राम कट ही के पीतर ताकु ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जय श्री महला नौवा हर जू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास भयो उर अंतर शरण गही कृपा नित तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी फुन करत पाप अबहारा पै मर बेकु बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ता कौ मर्म न पाया नाहिन गुण नाहिन

නොවා මනරී සච්චා ගහු විචාරා රාම නාම බින මිත්‍යා මනෝ

प्रभ त्याई है। त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाई है। तज मान मुहु विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक रे मन ताको ताई है सब विद जा के हाथ। राम नाम तन संची है नानक निभ साथ। चंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कुए। थान तनंतर आप जल थल पूर सोए। थान तनंतर आप जल थल पूर सोए। जल थल महियल पूर रहे आप सर्वदाता प्रभ तनी। गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गणी। भज शरण स्वामी सुखागामी किस बिना अन नाही कोवे। बिनवंत नानक दया धारो किस प्राप्त नाम हो। इस लोक चित

तहीं प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखे पौलयो। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सहब कमाल जिन्हों का प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हैं। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी का आना पटना की धरती ते साहिब जी का प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले के नजदीक बसदा है अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दे संगी साथी हैरान हन अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछया पीर जी की गल ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां इस दुनिया का मालक वो अज पटने की धरती ते उसने आना किया है। कोई बंदगी वाली रूह जुड़ी हुई रूह जिसनू पता है जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां पर बंदगी इहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा ना ही दूर। ये तो एहो जी बख्शिश हो जाए। पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोकी यात्रा करया करदे सन। तुर पए तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना किया। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे भले लई दोस्त दोखियन फकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आख दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई साडे धर्म दे लई
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

tanto su

0: But you have the shot. You want us to move the lights.
1: No, I got it.

0: ਨਾਨਕ ਨਾਮ
1: ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे। कहते हैं ऐसे गुरु को सानू बलखार जाना चाहिए है जिसनु नारायण नरपत नमस्कार। सारा ब्रह्मण उसनु नमस्कार करता है, उसनु पूजता है, उसका ध्यान करता है। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह अपने इस पावन शब्द राही सानू समझाना करते हैं कि भाई जी की बिरथा होए सो गुरु पहे अरदास कर। जद भी कोई गल हो गई तेरे मन के अंदर तू गुरु के कोल आके बैठ के उस अगे अरदास करनी है। वो इना समर्थ है कि तेरे मन की बुझ के ते मन की पूरी भी कर देगा। ऐसे गुरु तू अपन बलखार जाना चाहिए है आप मुक्त मोहित।

उसी वाला जीवन सेवा सेवन वाला जीवन सबन बख्शे सब दिया आशा मुरादा गुरु पूरी करे शुभकामनावान। तो अज सारा दिन ही कीर्तन दरबार है जी, गुरु के लंगर भी 7 जनवरी शाम के दीवानंद 6 to 8:30 उन्होंने लैके आने की कृपा करनी। 14 जनवरी माघी है, आपने 40 मुक्तियां का इतिहास उस दिन दरा है। आओ हूं कीर्तन शरण करो जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।

ਰੋਣ ਪਰਿੰਦਾ ਸੁਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਕਾ ਦਰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਮਿਲਿਆ ਚਲ

Okay.

Thank you.

Good morning.

Thank you.

Thank you.

Go.

Gracias.